0: ऑल द बेस्ट ने पास जाओ बगन यान के दर
1: थैंक यू अंकल सच्चो इन अनांदला उन क्रिकेट प्रैक्टिस आउट पूरा बुर्दो जॉब जॉइन आलावा पोला इन इवनिंग मरे पोच्चे